गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजी नगर. वेळ झाली 7:12 आणि तुम्ही ट्यून केलंय MGM 90.8 FM. कसका एकदम मस्त मजेत असालच असायलाच पाहिजे यार, कारण की आर जी अदनान तुमच्या सोबत आलाय. इसे कहते खुद की तारीफ खुद ही करना. बाय द वे आज तर आहे फ्रायडे, शुक्र है, शुक्रवार है. ये फ्रायडे का नाम सुनते ही ना तो दिल में ऐसे क्या बोलते लड्डू फूटने लगते हैं, और जो स्ट्रेस होता है या फिर कुछ फ्रस्ट्रेशन होता है, काम का लोड होता है, अपने आप कम हो ही जाता है. एंड आज बहुतों के ऑफिस में एक होगा फन फ्राइडे नाम की एक्टिविटी, वो HR लोग लेते हैं ना वही मत. और इसमें गिफ्ट के रूप में हमें क्या मिलता है, कैडबरी. भाई थोड़े पैसे वगैरह दे दो तो एम्प्लॉय भी खुश हो जाएगा फन फ्राइडे करने के लिए. खैर ऑफिस में फन फ्राइडे हो या ना हो, लेकिन आपकी जिंदगी में आप फन फ्राइडे जरूर कीजिएगा, क्योंकि शुक्रवार के दिन जब आप ऑफिस से बाहर निकलते हो ना तो सामने आपको नजर आता है वीकेंड, सैटरडे और संडे वाला. तो उसके क्या कुछ प्लान है आपके, जो भी प्लान आप बनाओगे ना उसको मुकम्मल कीजिएगा. और बाकी तो आज के दिन को खुशनुमा बनाइएगा, बहुत सारी बातें होगी. अब हर दिन सुविचार से स्टार्ट करना क्या ही जरूरी है भाई, कभी कभार हल्की फुल्की बातें भी कीजिएगा. जिंदगी बहुत सिंपल है, उसको हार्ड मत बनाइएगा. देखो बोलते बोलते ये भी एक सुविचार हो ही गया कि जिंदगी बहुत सिंपल है, उसे मुश्किल मत बनाइएगा और ज्यादा लोड मत लीजिएगा, सब कुछ ऑल इज वेल हो ही जाएगा. क्योंकि आप सुन रहे हो RG अदनान के साथ ऑल इज वेल, एंड स्टे ट्यून, कुछ देर के बाद लोड कराऊंगा.

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन कल्चर एंड मीडिया ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6, कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।

0: किस्सों का कारवां विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।
1: काश मैंने उस दिन ये कह दिया होता, ये एक सवाल हर किसी के दिमाग में अटका हुआ होता। एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था ऑफिस में काम करने वाला, नाम जरूरी नहीं है, क्या पता वह शख्स मैं या और आप में से भी कोई हो, इसलिए नाम तो जरूरी नहीं है ना। वो हमेशा वक्त पर आता था, सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलता था और हर मुश्किल काम में आगे रहता था और काम पूरा मुकम्मल करता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो बदल गया था, कम बोलता था, अक्सर चुप रहता था और उसकी मुस्कान भी कई खो गई थी। सबने नोटिस किया लेकिन किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि कॉरपोरेट दुनिया में हम अक्सर यही मान लेते हैं उसकी लाइफ है ना, वो संभाल लेगा। एक दिन वो ऑफिस नहीं आया, फिर अगले दिन भी नहीं आया। बाद में पता चला कि उसने नौकरी छोड़ दी है। कुछ लोगों ने कहा, अच्छा हुआ चला गया, कहीं और की बेहतर ऑफर मिली होगी। कुछ ने कहा, यार बड़ा अजीब था पिछले दिनों। और फिर बात वहीं खत्म हो गई। करीब एक साल के बाद एक एम्प्लॉय को वो एक कैफे में मिला। पहचान तो गया था लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। बातों बातों में उसने कहा, यार उस वक्त मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था, हर दिन ऑफिस आता था इस उम्मीद में कि कोई बस पूछ ले तो ठीक है ना। लेकिन किसी ने नहीं पूछा। उसकी बात सुनकर वो एम्प्लॉय चुप हो गया, क्योंकि सच तो ये था कि उसने भी कभी नहीं पूछा था। उसकी खामोशी भी उसकी थकान थी। लेकिन बाकी लोगों की तरह वो भी आगे बढ़ गया। उस दिन घर लौटते हुए बस एक ही बात मन में रह गई उस एम्प्लॉय के, काश मैंने उस दिन उससे कह दिया होता, यार अगर बात करनी हो तो कर ले, मैं हूं ना। कई बार लोगों को हमारी सलाह नहीं चाहिए होती, उन्हें बस सुनना होता है कि तुम अकेले नहीं हो। और अफसोस की बात यह है कि यह बात हमें अक्सर तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग सिर्फ कलीग नहीं होते, कभी कभी वो चुपचाप किसी लड़ाई से गुजर रहे होते हैं और इंसान भी होते हैं। ये बात सब लोग समझिएगा, और अगर ऐसा कोई शख्स आपके नजरों में हो तो उसे जरूर पूछिएगा, तो ठीक है ना। देखिए बहुत राहत मिलेगी।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

लेट्स टॉक अबाउट हेल्दी लाइफ, क्योंकि हेल्दी रहोगे तो वेल्दी रहोगे। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम सब ना तो अपनी बाइक या कार की रेगुलर सर्विस तो करते हैं ना, सभी लोग करते होंगे। थोड़ी सी आवाज आए तो मैकेनिक के पास जाते हैं, लेकिन एक सवाल है, अपनी बॉडी की सर्विसिंग आखिर कब करोगे आप, और आखिरी बार कब की थी, कुछ याद है? एज अगर आपकी 30 साल की एज है तो उसके बाद हमारी बॉडी धीरे धीरे बदलना शुरू कर देती है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ चीजें बिना किसी सिम्टम्स के भी बढ़ सकती है, जिसे ब्लड प्रेशर, कैलोरीज और ब्लड शुगर। और दिक्कत ये है कि कई बार इनका पता तब चलता है जब प्रॉब्लम काफी बढ़ चुकी होती है, इसलिए डॉक्टर रेगुलर हेल्थ चेकअप की सलाह देते हैं। एक सिंपल ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेकअप और बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स को शुरुआत में ही खत्म कर देती है। आजकल हम फिटनेस एप्स में स्टेप्स काउंट करते हैं, कैलोरीज ट्रैक करते हैं, लेकिन अपने हेल्थ नंबर्स, बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का पता ही नहीं होता है हमें। और दोस्तों, एक खास बात की हेल्थ चेकअप करवाना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बीमार है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि अपनी सेहत को लेकर आप सीरियस है। अगर आप 30 प्लस हो गए तो इस साल एक बेसिक हेल्थ चेकअप जरूर करवाएगा, क्योंकि सेहत की असली जीत तो समय पर जांच करने में है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट, और याद रखिए, आज का एक हेल्थ चेकअप कल की बड़ी परेशानी को रोक सकता है। स्टे ट्यून।

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और अपने साथ है डॉक्टर मानसी करतगांवकर मैम, HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम के साथ हम कॉर्पोरेट स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। मैम, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के लिए डेली स्ट्रेस मैनेज करने के सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स क्या है?
1: देखिए, पहली बात है जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ कि पहले हमारे मेजर 3 टास्क जो है हमको वो प्रायोरिटाइज करके सबसे पहले हमें वो खत्म करना है। हमें उन 3 चीजों पे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अब मान लीजिए कि 3 चीजें मेरी काफी इम्पोर्टेंट है जिनमें से एक चीज नहीं हुई है, तो वो क्या होता है कि मेंटली एक बर्डन फील होता है हमको, और उस बर्डन की वजह से दूसरी चीजों में भी मन नहीं लगता, दूसरे काम भी ठीक से नहीं होते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमारे मोबाइल में कोई एक ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला या ज्यादा डेटा कंज्यूम करने वाला ऐप अगर बैकग्राउंड में चल रहा हो तो हमारा मोबाइल का फंक्शन कैसे कम हो जाता है। सो सिमिलरली हमको वैसे मेजर रोज

0: तो आप सब भी ट्राई कर सकते हैं।
1: सो आप अपना स्ट्रेस किस तरीके से मैनेज करते हो, तो ये टिप्स आप यूज कीजिएगा और फायदा तो आपको होगा ही। सो याद रखिए ये टिप्स, और भी आपके मन में कुछ सवाल हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, और सुनते रहिए।

फरमाइश फरमाइश और फरमाइश आपकी फरमाइश सराखों पर. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM. बंदे का नाम है अदनान और इस वक्त हम आपकी फरमाइश पूरी करते हैं. और आज के गाने की फरमाइश आई है अपने पास.

हमें तुमसे प्यार कितना। कुदरत इस फिल्म का ये गाना है और इस गाने को गाया था किशोर कुमार जी ने और संगीत था आरडी बर्मन जी का। 1981 की क्लासिकल फिल्म कुदरत से ये गाना है। ये गाना ना तो अपनी सादगी और गहरी भावनाओं के साथ बहुत फेमस है। तो चलिए फिर अशोक जी की फरमाइश पर ये गाना भी हम एंजॉय करते हैं। एंड आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप।

आप लोग सिग्नल ब्रेक करते हो या फिर आपकी गाड़ी पर फाइन बैठता है तो आप सोचते हो ठीक है ना, बाद में भर लेंगे, कौन ही हमें पूछने वाला है। ये सवाल दिमाग में आता है ना, तो तुरंत इसको बाहर निकालिए। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और ये जो सवाल है ना माइंड में कि यार ठीक है, ई चलान मोबाइल पर आ गया ना, बाद में देख लूंगा, ये बाद में देख लूंगा का सिलसिला इतना बढ़ता है कि आपके नाम के ऊपर चलान पर चलान, चलान पर चलान आते रहते हैं, बट आप सुधरने का नाम ही नहीं लेते। और फाइन भरना, चलान पे करना, ये तो आपके डिक्शनरी में है ही नहीं। सच्ची कह रहा हूँ ना मैं, ऐसा कहते हो ना, एक बार बस आपका चलान चेक कीजिएगा कितना हुआ, और ये पे करने का दूर दूर तक कोई आपका इरादा नहीं होता है। तो अब RTO एकदम एक्शन मोड पर आ चुकी है और चलान रिकवरी करने का काम उन्होंने शुरू किया है और नया रूल उन्होंने लागू किया है। इसके अंदर कुछ ऐसा है कि अगर आपके व्हीकल के ऊपर ई चलान आया है तो आपको तकरीबन 45 दिन के अंदर यानी कि 45 डेज के अंदर वो चलान पे करना पड़ेगा। अगर 45 डेज में आपने चलान पे नहीं किया तो आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर आप गाड़ी सड़क पर चला भी नहीं सकते। कोई कोई तो भाई दो दो तीन तीन साल चलान पे ही नहीं करता, इस वजह से बस चलान बढ़ता रहता है। तो ये नया रूल अभी लागू किया गया है, तो इसको फॉलो कीजिएगा एंड 45 डेज के अंदर आपकी गाड़ियों पर जितना चलान है उतना पे कीजिएगा। तो अब बाद में मत कहना कि यार मुझे तो पता ही नहीं था ये सब, ऐसे कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। भाई अब मैंने बता दिया ना, तो अब इसको समझिए और फॉलो कीजिए। बी सेफ, बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून।

0: कहते हैं ना कि सर सलामत तो पगड़ी हजार, तो ये बात सच है भाई, इसलिए सर को सलामत रखना चाहिए। यू आर लिसनिंग एमटीएम 90.8 एफएम, आरजे अदनान आपके साथ है। और सर सलामत रखने के लिए आपको क्या करना है, हेलमेट यूज करना है। खूब सिंपल गोष्ट है, फक्त हेलमेट यूज कराए। जाता काही काही जण म्हणतील मला हेलमेट नाही घालायचंय, माझी हेअर स्टाईल खराब होईल। अरे बावा, अगर सरी ने बचेगा बाली ने बचेगे तो हेअर स्टाईल कहां से करेगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 4 महीने के अंदर 244 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई रोड एक्सीडेंट में, और 60% मौतें ये बस हेलमेट ना यूज करने की वजह से हुई है। देखा, 60% मौतें, इसे कहते हैं लापरवाही का नतीजा। तर आता लवकरात आपल्या छत्रपती संभाजीनगर मध्ये हेलमेट कंपल्सरी होणार आहे, आणि यासाठी शहर पोलीस आणि आरटीओ विभाग एकदम ऍक्शन मोड मध्ये येणार आहे, आणि सुरुवात सुद्धा झाली आहे। पोलीस डिपार्टमेंट मध्ये आणि आरटीओ मध्ये विदाउट हेलमेट एंट्री नाहीये, आणि तेथील सर्व कर्मचाऱ्यांना पोलिसांना आदेश आहे की विदाउट हेलमेट ऑफिस मध्ये यायचं नाहीये, आणि हाच रूल सर्व शासकीय ऑफिस मध्ये सुद्धा लागू होणार आहे, आणि त्यानंतर पूर्ण आपल्या शहरात हा रूल लागू होईल हेलमेट कंपल्सरी वाला। और मुझे लगता है कि होना ही चाहिए यार, भाई बहन दादाजी बुआ जी दादी जी पापा मम्मी आंटी अंकल सभी लोग याद रखिएगा कि हेलमेट आप फाइन भरने के लिए प्रशासन के डर से गवर्नमेंट के डर से मत पहनिएगा, अपने खुद के सेफ्टी के लिए पहनिएगा। और एक चीज याद रखिए, कोई तो है जो आपका घर पर इंतजार कर रहा है, तो प्लीज उनके लिए तो भी आप हेलमेट पहनिएगा। सर सलामत तो पगड़ी हजार, समझे। स्टे ट्यून्ड।
1: आपण इंग्लिश फ्रेंच जर्मन किंवा जपानीज शिकायचं स्वप्न पाहताय की अरेबिक संस्कृत मराठी आणि उर्दू यांसारख्या भाषांमध्ये निपुण व्हायचंय,
2: तर मग एमजीएम युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन अँड फॉरेन लँग्वेज मध्ये आपलं स्वागत आहे।
1: अवेलेबल कोर्सेस बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इन इंग्लिश मराठी हिंदी उर्दू अँड संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन क्रिएटिव्ह रायटिंग इन इंग्लिश संस्कृत फ्रेंच जर्मन उर्दू जपानीज पर्शियन अँड ट्रान्सलेशन, यासोबतच विविध सर्टिफिकेट कोर्सेस सुद्धा उपलब्ध।
2: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, आजच भेट द्या www.mgmu.ac.in
1: किंवा कॉल करा 9763679245 9665353515 और 9371714259।
0: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी, एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक, आरोग्य तपासणी उपचार शस्त्रक्रिया लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी, एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6, कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।

वाचाल तर वाचाल असं म्हणतात आणि ते खरं आहे. यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM. आरजी अदनान तुमच्या सोबत आहे आणि वाचन फार गरजेचं आहे. आप जितना रीड करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी. और कहते हैं ना कि एक किताब आपके 100 दोस्तों से बेहतरीन होती है, क्योंकि उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है. आप कोई भी बुक रीड करो, नॉवेल करो, पोएट्री करो, कोई हिस्टोरिकल बुक रीड करो, लेकिन पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, बुक रीड करना बहुत जरूरी है. तर आज अपन साजरा करत आहोत वाचन प्रेरणा दिन. तर वाचन प्रेरणा दिन का साजरा केला जातो, तर द मिसाईल मॅन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्या बर्थ अॅनिव्हर्सरीच्या निमित्ताने आजचा दिवस आपण वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करतोय. तर आज आपण यावर बोलणार आहोत आणि आपण आयुष्यात ना अनेक पुस्तकं वाचले असतील, त्याच्यातून काही ना काही आपल्याला शिकायला मिळतं, ते पुस्तक कसं आहे त्याबद्दल आपल्याला कळतं. सो आपने भी अगर ऐसी कोई बुक रीड की होगी जिससे आपको कुछ नॉलेज मिला हो और बहुत कुछ सीखने को मिला हो, तो कौन सी बुक थी और कब आपने रीड की थी उसके बारे में जरा आप मुझे बताइए ना कि कैसा आपका अनुभव था उस बुक का और उससे क्या सीखने को मिला. कॉल कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर. और हाँ, व्हाट्सएप कॉल करना, नंबर फिर से एक बार दोहराता हूँ, 9359320080. बताइएगा कि उस किताब से आपको क्या सीखने मिला, कैसी वो किताब लगी. याद से कॉल कीजिए, मैं आपके कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ. स्टे ट्यून्ड.

फिल्म हसी वो जाने मन है, ये फिल्मों में नंबर वन है। गोविंदा है हीरो उसका और माधुरी हीरोइन है। पिछली सीट की दो टिकटें हैं, कुछ प्यार करें।

0: आहेतच. पण याचबरोबर सेन्सर टेक्नॉलॉजी, कंट्रोल सिस्टम आणि कंट्रोलर आवश्यक असतात ऑटोमेशन अप्लाय करायला. आणि इथेच आज अनिवार्य आहे इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंग.
1: कॉलेज आणि इंडस्ट्री यांच्यातील गॅप कमी करण्यासाठी आम्ही सुरू केलंय UDICE
0: MGM युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंग, जिथे शिकलं म्हणजे थेट इंडस्ट्री आणि जॉब रेडी होणं. सोच बदलो, इंस्ट्रुमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784.
2: एडमिशन ओपन MGM यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Circle, Chhatrapati, Sambhajinagar.

0: राष्ट्रीय वाचन दिवस आज आपण साजरा करत आहोत. तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM आणि या निमित्ताने आपण जाणून घेत आहोत की आपल्या लिस्नर्सने कोणकोणते पुस्तकं वाचले होते आणि ते त्यांना कसे वाटले, त्या पुस्तकासंदर्भातील अनुभव सांगतायत, त्यातून त्यांना काय माहिती मिळाली.
1: नमस्कार सभी को, मैं प्राध्यापिका अनिता फुलवाड़े शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ MGM विश्वविद्यालय के अंतर्गत. आज मैं आप लोगों को समकालीन नाटककार शांति मेहरोत्रा की एकांकी एक और दिन के बारे में बताना चाहती हूँ. यह एक एकांकी इस तरह की है कि जिसमें दो पीढ़ियों का संघर्ष बताया गया है. इस एकांकी में एक परिवार दर्शाया है जिसमें माता पिता और उनके बच्चों के विचारों का मेलजोल नहीं बनता है. विगत 50 साल पहले भी आज की ही यह समस्या हमें दिखाई देती है. परिवर्तनशील समाज में माता पिता का समय और अधुनातन पीढ़ी के बच्चों का विचार वैमनस्य के कारण बच्चे पढ़ लिख कर माता पिता से विलग होकर रहने लगते हैं. सभी को एक दूसरे के प्रति अनादर, प्रेम की समस्या तथा उनमें पीढ़ी जात संघर्ष जो है हम लोगों को दिखाई देता है. इसी कारण आज के अधुनातन समाज में सामाजिक, पारिवारिक, भावनिक समस्याओं को समझकर एक परिवार इकट्ठा रख सकते हैं. यह संदेश यह एक और दिन एकांकी हमें देती है. समाज में स्थित सामाजिक आडंबर एवं प्रेम की कमतरता के कारण पारिवारिक संघर्ष बढ़ते जाते हैं. शांति मेहरोत्रा जी की एकांकिका पढ़कर परिवार को संजोय रखने का संदेश यह हमें देती है. धन्यवाद.
0: आज राष्ट्रीय वाचन दिन आपण साजरा करत आहोत, तर मित्रांनो तुम्ही सुद्धा अशीच पुस्तक वाचत राहा, कारण की वाचाल तर वाचाल. स्टे ट्यून ऑन MGM 90.8 FM.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: चांदी की डाल पर सोने।
1: हेलो हाय नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर
2: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहा होगा और अब शाम की ये खूबसूरत घड़ी आपको थोड़ी राहत और सुकून दे रही होगी। दिन भर की भागदौड़, काम का दबाव और जिम्मेदारियों के बीच शाम एक ऐसा समय लेकर आती है जब हम खुद से दो पल जुड़ सकते हैं। शाम का मतलब सिर्फ सूरज का ढलना नहीं होता बल्कि एक मौका भी होता है दिन भर के अनुभवों को समेटने का, अपनी छोटी छोटी सफलताओं को याद करने का और कल के लिए नई ऊर्जा जुटाने का। अगर आज का दिन आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं गया तो भी मत कीजिए। हर शाम हमें ये याद दिलाती है कि हर दिन नया होता है और हर सुबह अपने साथ नई संभावनाएं लेकर आती है, यू नो प्रोबेबिलिटी। तो इस वक्त अपने मन को थोड़ा आराम दीजिए, अपने प्रियजनों, अपने साथ ही अपने दोस्तों के साथ कुछ पल बिताइए, अपनी पसंद का संगीत गाना सुनिए या बस एक कप चाय के साथ एक खूबसूरत शाम का आनंद लीजिए। हमारी यही कोशिश है कि आपका ये शाम का सफर और भी खुशनुमा बने, इसलिए बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे भी हम लेकर आ रहे हैं बेहतरीन गाने, दिलचस्प बातें और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी। सो आप सुनते रहिए एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।
1: फक्त इंजिनियर नव्हे तर फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल बनायचे,
2: मग निवडा एमजीएम विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग। सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन,
1: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
2: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप,
1: लिमिटेड सीट्स। आजच एमजीएम विद्यापीठ केमिकल इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीनता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन, व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, आंतररुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
5: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा। BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
6: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस, सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल, शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा।
7: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26 MGM युनिव्हर्सिटी एन 6 सिडको, विजिट MGMU.AC.IN, कॉल 9503 08 2913।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। हम सभी अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, कोई अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, कोई अपने सपनों का घर बनाना चाहता है तो कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है। सफलता हर किसी के लिए अलग हो सकती है लेकिन एक बात समान है, सफल होना हमें आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है। लेकिन सफलता सिर्फ बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करने का मतलब नहीं है, सफलता का मतलब है हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना। अपनी लक्ष्य की ओर छोटा सा कदम बढ़ाना भी सफलता ही है। कई बार हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अपनी जर्नी को कम आंकने लगते हैं, जबकि हर व्यक्ति का रास्ता और समय अलग होता है। याद रखिए, सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत, धैर्य और लगातार सीखते रहने की जरूरत होती है। रास्ते में असफलताएं भी आएगी लेकिन वही असफलताएं हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का हौसला भी देती है। इसीलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि असली सफलता वही है जो आपको खुशी दे, आत्मसम्मान दे और जीवन में संतुलन बनाए रखे। अपने सपनों को छोटा मत समझिए, आज जो छोटा सा प्रयास आप कर रहे हैं वही कल की बड़ी सफलता है। एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए एमजे मनाडी पॉइंट एफएम, साथ है तो बात है।
1: मास्टर टुमारोस टैंक टुडे नॉट समडे, मेक टुडेज वन राइट डिसीजन टुमारोस ब्राइट फ्यूचर। जॉइन डॉक्टर जीवाई पत्रिकर कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी एंड एमजीएम यूनिवर्सिटी फॉर बीएससी ऑनर्स, बीसीए, Digital Marketing, Animation, Data Science, MSc and PG Diploma, NEP 2020 ready, world-class labs or real industry projects start. Admissions open for Dr. G.Y. Patrikar College for 2026 and 27. For more information, visit mgmu.ac.in or call on 937-117-4254.
2: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
2: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन, व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
3: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, एचपी पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
4: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
5: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
6: बारावी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि पदवी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
5: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी to visit mgmu.ac.in.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। शाम का समय आते ही अक्सर हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि छोटी सी लेकिन ज़रूरी चीज़ भूल जाते हैं, वो है शाम का नाश्ता। अब आप सोच रहे होंगे, अरे रात का खाना तो खाना ही है, फिर नाश्ते की क्या ज़रूरत। लेकिन दोस्तों, शाम का हल्का फुल्का नाश्ता आपके शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। पूरे दिन काम करने के बाद शरीर और दिमाग दोनों को थोड़ा फ्यूल चाहिए होता है, ताकि आप शाम के बाकी के काम अच्छे से कर सके। कई बार नाश्ता छोड़ देने से रात में बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, फिर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। इसलिए शाम के समय कुछ हेल्दी खाना एक अच्छी आदत हो सकती है, जैसे फल, भुने हुए चने, स्प्राउट, ड्राई फ्रूट्स, या फिर एक कप चाय के साथ हल्का स्नैक। और हाँ, नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए कुछ मिनट निकालने का भी बहाना होता है। चाहे ऑफिस में हो, घर पर हो, या सफर में, 2 मिनट रुकिए, कुछ खाइए और खुद को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। वेल, अगर आपने अभी तक शाम का नाश्ता नहीं किया है तो एक छोटा सा रिमाइंडर समझ लीजिए। काम तो चलता रहेगा, लेकिन सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। आप सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कभी कभी दिल में एक सवाल बार बार आता है, क्या मैं उस इंसान के लायक हूँ जिसे मैं इतना पसंद करती हूँ। शायद इसी एहसास को बहुत खूबसूरती से बयां करता है ये खूबसूरत गाना, कब बन जाएगा तेरे काबिल मेरा ये दिल। प्यार सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं है बल्कि खुद को बेहतर बनाने की इंस्पिरेशन भी है। जब कोई हमारे दिल के करीब होता है तो हम उसकी नज़रों में अपनी एक बेहतर पहचान बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बातें, हमारे सपने, हमारी कोशिशें उस इंसान को गर्व महसूस कराए। रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात यही है कि उनमें परफेक्शन नहीं बल्कि सच्चाई मायने रखती है। किसी के काबिल बनने की कोशिश अच्छी बात है लेकिन खुद को कमतर समझना कभी सही नहीं होता, क्योंकि असली रिश्ता वही होता है जहां आपको आपकी कमियां और खूबियों के साथ स्वीकार किया जाए। अगर आपके दिल में भी किसी के लिए ऐसी ही भावनाएं हैं तो अपनी कद्र करना मत भूलिए, खुद पर भरोसा रखिए, अपनी पहचान बनाइए और अपने सपने को भी उतना ही अहमियत दीजिए। तो चलिए इसी खूबसूरत एहसास के साथ, इसी मीठी चाहत के साथ और भी सुनते हैं कुछ अमेजिंग गाने ओनली ऑन एमजे मैडी पॉइंट एफएम। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। जब भी सोशल मीडिया की बात होती है अक्सर इसके नकारात्मक पहलू पर ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव भी ला सकती है। सोचिए, आज हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों के साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखना पहले से ज्यादा इजी हो गया है। कई बार एक छोटा सा मैसेज या वीडियो कॉल भी अपनों को करीब महसूस करा देता है। सोशल मीडिया सीखने का भी एक बेहतरीन माध्यम बन चुका है। नई स्किल सीखना हो, किसी विषय की जानकारी लेनी हो या फिर अपने करियर को बेहतर बनाना हो, आज ढेर सारी उपयोगी जानकारी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। इतना ही नहीं, कई लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने हुनर को दुनिया तक पहुँचा रहे है। कोई अपनी कला दिखा रहा है, कोई अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई लोगों को इंस्पायरिंग करने का कंटेंट साझा कर रहा है। हालांकि हर चीज की तरह इसका संतुलित उपयोग भी जरूरी है। अगर हम सोशल मीडिया को सिर्फ तुलना करने के बजाय सीखने, जुड़ने और पॉजिटिविटी फैलाने के लिए इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। सोशल मीडिया को अपना समय बर्बाद करने का नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का माध्यम बनाइए। अच्छी बातें सीखिए, सकारात्मक लोगों से जुड़िए और ऐसी चीजें साझा कीजिए जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आए। एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी मनीषा आपके साथ। सोशल मीडिया आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इससे हमें जानकारी मिलती है, लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है और एंटरटेनमेंट भी होता है। लेकिन हर चीज की तरह इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। कई बार हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं। किसी की सफलता, किसी की यात्रा या किसी की खुशियाँ देखकर हमें लग सकता है कि हमारी जिंदगी उतनी अच्छी नहीं है, जबकि सच ये है कि सोशल मीडिया पर अक्सर लोग अपनी जिंदगी के सिर्फ अच्छे पल ही दिखाते हैं। एक और समस्या है समय की बर्बादी। हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट के लिए फोन देखेंगे, लेकिन कब आधा घंटा या एक घंटा निकल जाता है।

जाता है पता ही नहीं चलता। ये हमारी पढ़ाई, काम और निजी रिश्तों पर भी असर डालता है। इसके अलावा गलत जानकारी और अफवाह भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैलती है। बिना जांचे परखे किसी भी खबर पर विश्वास करना कई बार परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल समझदारी से करें, स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक ले, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताए और असली दुनिया के अनुभवों को भी उतना ही अहमियत दे। सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, लेकिन उसे अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दीजिए। टेक्निक हमारे लिए बनी है, हम टेक्निक के लिए नहीं, इसे समझ लीजिए। एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज के समय में सोशल मीडिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसका इस्तेमाल सिर्फ समय बिताने के लिए कर रहे हैं या अपनी बेहतरी के लिए भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक बहुत ही ताकतवर माध्यम है, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये हमें नई चीजें सिखाने में कामयाब हो सकता है, अपनी नॉलेज बढ़ाने में, अपने सपनों के करीब पहुंचने में मदद कर सकता है। आज हजारों लोग सोशल मीडिया के जरिए नई स्किल सीख रहे हैं, करियर से जुड़ी जानकारी हासिल कर रहे हैं और अपने हुनर को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। आप भी अपने फीड को ऐसा बना सकते हैं जहां आपको प्रेरणादायक बातें, उपयोगी जानकारी और सकारात्मक सोच मिले। साथ ही ये भी जरूरी है कि हम सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय पर ध्यान दें। हर पोस्ट या वीडियो देखना जरूरी नहीं होता, जो चीजें आपकी सोच, आपकी जानकारी और आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाए उन्हीं पर अपना समय लगाइए। सोशल मीडिया आपको आगे भी ले जा सकता है और आपका समय भी बर्बाद कर सकता है, फैसला आपके हाथ में है। अगर आप इसे सीखने, बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी सफलता का एक शानदार साथी बन सकता है। तो फिर आज से सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक अवसर समझिए, कुछ नया सीखिए, पॉजिटिव लोगों से जुड़िए एंड ऑफ कोर्स हमसे भी जुड़िए। सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: जिम 90.8 FM और मैं हूं मनीषा आपके साथ। देखते देखते शाम का ये खूबसूरत सफर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। उम्मीद है कि आज की इस महफिल ने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई होगी, आपको कुछ अच्छे गाने सुनने को मिले होंगे और कुछ ऐसी बातें भी मिली होगी जो आपके दिल को छू गई होगी। दिन भर की व्यस्तता के बाद हम सभी को कुछ ऐसे पल की ज़रूरत होती है जो हमें सुकून दे और थोड़ी सकारात्मक ऊर्जा से भर दे। अगर हमारी आज की शाम आपके लिए ऐसा ही एक छोटा सा ठहराव बन पाई है तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कुछ हो भी नहीं सकती। अब समय है इस खूबसूरत शाम को अलविदा कहने का और एक नई रात का स्वागत करने का। रात सिर्फ आराम करने का समय नहीं होता बल्कि अपने मन को शांत करने, दिन भर के अनुभव को समेटने और कल की नई उम्मीदों के साथ तैयार होने का मौका भी होता है। तो आज रात अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, अपने परिवार के साथ कुछ पल बिताइए, अपनी पसंद का गाना सुनिए, कोई अच्छी किताब पढ़िए या बस कुछ देर के लिए खुद के साथ वक्त गुजारिए एंड दिन भर की अच्छी बातों को याद कीजिए। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शाम में, नई एनर्जी के साथ, नए गानों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: अपन इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन किंवा जापानी शिकायचं स्वप्न पाहताय की अरेबिक, संस्कृत, मराठी आणि उर्दू यांसारख्या भाषांमध्ये निपुण व्हायचंय,
2: तर मग MGM युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन अँड फॉरेन लँग्वेज मध्ये आपलं स्वागत आहे।
1: अवेलेबल कोर्सेस BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इन इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उर्दू एंड संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन, या सोबतच विविध सर्टिफिकेट कोर्सेस सुद्धा उपलब्ध।
2: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, आजच भेट द्या www.mgmu.ac.in
1: किंवा कॉल करा 9763679245, 9665353515 और 9371714259।

0: राष्ट्रीय वाचन दिवस आज आपण साजरा करत आहोत. तुम्ही ऐकत आहात एमजीएम 90.8 FM. आणि या निमित्ताने आपण जाणून घेत आहोत की आपल्या लिस्नर्सने कोणकोणते पुस्तकं वाचले होते आणि ते त्यांना कसे वाटले, त्या पुस्तकासंदर्भातील अनुभव सांगताय, त्यातून त्यांना काय माहिती मिळाली आहे.
1: नमस्कार सभी को, मैं प्राध्यापिका अनिता फुलवाड़े शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ एमजीएम विश्वविद्यालय के अंतर्गत. आज मैं आप लोगों को समकालीन नाटककार शांति मेहरोत्रा की एकांकी एक और दिन के बारे में बताना चाहती हूँ. यह एक एकांकी इस तरह की है कि जिसमें दो पीढ़ियों का संघर्ष बताया गया है. इस एकांकी में एक परिवार दर्शाया है जिसमें माता पिता और उनके बच्चों के विचारों का मेलजोल नहीं बनता है. विगत 50 साल पहले भी आज की ही यह समस्या हमें दिखाई देती है. परिवर्तनशील समाज में माता पिता का समय और अधुनातन पीढ़ी के बच्चों का विचार वैमनस्य के कारण बच्चे पढ़ लिख कर माता पिता से विलग होकर रहने लगते हैं. सभी को एक दूसरे के प्रति अनादर, प्रेम की समस्या तथा उनमें पीढ़ी जात संघर्ष जो है हम लोगों को दिखाई देता है. इसी कारण आज के अधुनातन समाज में सामाजिक, पारिवारिक, भावनिक समस्याओं को समझकर एक परिवार इकट्ठा रख सकते है. यह संदेश यह एक और दिन एकांकी हमें देती है. समाज में स्थित सामाजिक आडम्बर एवं प्रेम की कमतरता के कारण पारिवारिक संघर्ष बढ़ते जाते हैं. शांति मेहरोत्रा जी की एकांकिका पढ़कर परिवार को संजोय रखने का संदेश यह हमें देती है. धन्यवाद.
0: आज राष्ट्रीय वाचन दिन आपण साजरा करत आहोत. तर मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा अशीच पुस्तक वाचत राहा, कारण की वाचाल तर वाचाल. स्टे ट्यून ऑन एमजीएम 90.8 FM.
2: मास्टर टुमॉरोज टेक टुडे नॉट समडे. मेक टुडेज वन राइट डिसीजन, टुमॉरोज ब्राइट फ्यूचर. जॉइन डॉक्टर जी वाय पात्रीकर कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी एट एमजीएम यूनिवर्सिटी for BSc Honours, BCA, Digital Marketing, Animation, Data Science, MSc and PG Diploma, NEP 2020 ready, world-class labs or real industry projects start. Admissions open for Dr. G.Y. Patrikar College for 2026 and 27. For more information, visit mgmu.ac.in or call on 937-117-4254.
3: आजकाल भारतातल्या गावोगावी गच्चींचं रूप बदलून गेलंय. जिथे आधी फक्त पापड आणि कपडे वाळत घातले जायचे, तिथे आता वीज बिल शून्य होत आहे. गावोगावी लोक सोलर पॅनल बसवत आहेत. तुम्ही बसवून घ्या. भारत सरकार तब्बल 78,000 सबसिडी देते. 30 लाखांहून अधिक कुटुंबांनी तर आधीच याचा फायदा घेतलाय.
4: पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना, सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करा pmsuryaghar.gov.in वर.
5: हर घर सूर्यघर.
6: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management.

0: थई झाक दिनक दिन थाक दिनक दिन थाक दिनक दिन थाक दिनक दिन खा
1: आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

पहन कर कैसा कूदे फांदे वाह फकीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अपने दुम में

तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।